0: सुनार गोपाल सुनार फोन नम्बर 9824-68-25।
1: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौ। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
2: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हात जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: होंडा सँगै यो दशैंमा आशाको शुरुआत गरौँ। स्क्र्याच कुपन मार्फत 1,00,000 जित्ने मौका। चुज एनी वन स्किम अन्तर्गत थप्रो 10,000 सम्मको स्क्र्याच कुपन, 7 वर्षसम्म फ्री सर्भिसिङ अथवा 5 वर्षसम्म AMC र होंडा छ 7-7 अन्तर्गत विजेतालाई जितेको रकम प्रदान गर्दै सोही बराबरको रकम होंडा नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्नेछ।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ ससानो कुरामा टना भुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलतमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असोज 24 गते र 31 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
4: हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा शुभ दीपावली 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
5: हेलो बहिनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाईवाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी 560 रुपियाँमा उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कतिमा किन्यौ
6: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 रुपियाँमा किने
5: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो 560 रुपियाँमा त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै रु 25 क्लासिक चाउचाउ र 35 चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 रुपियाँमा मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता
6: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 98 48 40

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई करा परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज

दिन मेला शुरू लगातार 10 चोट 4 जीपीए हासिल कटी टीकापुर के परवेश रावल के उत्कृष्टता वो कांग्रेस महाधिवेशन के निर्वाचन आज सभापति के उम्मीदवार राठौर से उम्मीदवारी फिरता आप खोज खबर विस्तार में हाल देश में पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के संग स्थानीय वायु के प्रभाव समेट रहल बा वायु के प्रभाव के कारण बागमती गंडकी कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश के सक्कू भूभाग व कोशी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बद्री लागल बा कलश्य मध्य प्रदेश लगायत कोशी व सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक बद्री लागल बा गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के कुछ ठाव तथा बागमती कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दुई ठाव में मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम सम्म के वर्षा हुई रहल बा आज दिन का मध्य लगायत कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाव में तथा लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव में मेघगर्जन चट्यांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना बा बागमती और गंडकी प्रदेश के पहाड़ी व तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना रहल बा सुदूरपश्चिम में आज के तुलना में काल बढ़ी पानी पर्ना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइल बा आज से फिर काल बढ़ी पर्नी पानी पर्ना संभावना रहल कोर्से पकलक धान निकाट समय मौसमविद माधवी सिग्देल किसान हुकन आग्रह कलबाट कैलाली के धनगरी में मादक पदार्थ सेवन मापसे जांच में खटगिलक तीन प्रहरी कर्मचारी मोटरसाइकिल से ठक्कर देहबेर घाइते हुई धनगरी उपमहानगरपालिका दुई स्थित पेट्रोल पंप लगभग बुधवार रात का 8:05 बजे ट्राफिक प्रहरी सहित के संयुक्त मापसे चेकिंग में खटगिलक प्रहरी मोटरसाइकिल से ठक्कर दे गिलक हो प्रहरी के अनुसार कंचनपुर के पुनर्वास नगरपालिका एक घर के 23 वर्षीय आशीष चौधरी चलेलक से 3P 9950 नंबर के मोटरसाइकिल चेकिंग में खटगिलक प्रहरी कर्मचारी ठक्कर दिल रह मोटरसाइकिल के ठक्कर से सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी गण धनगरी में कार्यरत प्रहरी हवलदार राधिका कुमारी शाही प्रहरी हवलदार उज्जवल सिंह साउट और प्रहरी सहायक हवलदार कमला खत्री घाइटे हुईलबाट धनगरी उपमहानगरपालिका तीन के 38 वर्षीय शाही के छाती तथा दुनू हाथम चोट लागल बा वहां के अवस्था मध्यम रहलक प्रहरी से जनागिल बा वस्तक अछाम के राम रोशन गांवपालिका दुई के 38 वर्षीय साउट के दुनू ग्वारा व मुन्टा मन चोट लागल बा वहां के अवस्था फिर मध्यम रहल बा धनगरी तीन के 35 वर्षीय खत्री शरीर में भित्री चोट लगलग प्रहरी से जनागिल बा वहां के अवस्था सामान्य रहल बा घाइते तीन जना के धनगरी स्थित नवजीवन अस्पताल में उपचार हुईटी रहल बा घटना पाछ प्रहरी मोटरसाइकिल चालक चौधरी के संग मोटरसाइकिल के पाछ सवार कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 6K 17 वर्षीय समीर चौधरी समेत नियंत्रण में लेलबा हुकन मोटरसाइकिल सहित जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली में धरगिलक प्रहरी से जनाकिल बा टीकापुर नगरपालिका वड़ा नम्बर तीन के वड़ा सदस्य जयराम थारू के घर में चट्यांग परल बा काली अलग हावाहुरी के संग चट्यांग परगिलक हो घर में न बैती रलक बेला चट्यांग परबे लगघर रहलक मल्टीप्लक वायरिंग के तार बोर्ड सक्कु जर्क छेटी हुई बा चट्यांग के झिलका के कारण घर भीतर अपना बैठलक ठाव लगघ छुट्टी खोल्टी बनैलक अपना बाया कान निसुन कान सुन छोलक सदस्य जयराम थारू बटुलबाट वस्तक छिमेकी में रहलक विपतराम चौधरी के मीटर बक्स फे फुटलवा कलसे तार जरकन तार सकु जरलक वहां बटुलबाट कैलाली के टीकापुर में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुकन के अर्थपूर्ण सहभागिता के लाख वड़ा अध्यक्ष व वड़ा सचिव के भूमिका विषय में छलफल हुई बा छलफल में जनप्रतिनिधि दलित समुदाय व महिला के विकास के लागि नेतृत्व विकास क्षमता विकास तालीम संचालन करना पंचेबाजा तालीम व बेडबास के फर्नीचर निर्माण तालीम संचालन करना प्रतिबद्धता करगिल बा प्रभावकारी व समावेशी स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत टीकापुर नगरपालिका के आयोजना दलित महिला केन्द्र के सहकारीमा कार्यक्रम हुईलक हो टीकापुर में दलित महिला केन्द्र महिला जनप्रतिनिधि के क्षमता अभिवृद्धि मेन्टरिंग कार्यक्रम लम्बा समय थे से करती आयल बा दुई महीना आघ दलित महिला के विकास के लागि हुईलक छलफल से बनागिलक योजना कार्यान्वयन हुईल नई हुईल के पूर्ण ताजकी के लाख कार्यक्रम करगिलक हो कार्यक्रम सहजीकरण करती पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकार के पूर्व सचिव कृष्ण हरिबास्टोला

0: वटा पालिका महिला मैत्री कार्यक्रम जस्ता दलित महिलाके विकास र सशक्तिकरण छात्रा अंकन छात्रवृत्ति लगायतके ढ्यूर कार्यक्रम करपना बटुलबाट वहाँ टीकापुरमा दलितके क्षेत्रमा मजा काम करलक कना सन्देश देना कैक काम कर सुझाव देलबाट दलित महिला केन्द्रके उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य दुलारी हरिजन ईसी आगफे अन्तर्क्रिया कैक योजना समेत बना सेकलक उहाँसे ईसी आग बनागिलक योजना यही वर्षके बजेटमा समेत गिल बा या नै हो कना बारे छलफल हुइलक बटुइलबाट कार्यक्रममा टीकापुरके कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगाजी कार्यक्रममा नगरसभा सञ्चालन सुशासन कायम आग ई सिकाई हुइलक बटुइटी महिला तथा दलित केलाग बजेट व्यवस्था हुइलकमा तत्काल कार्यक्रम कना व बजेट व्यवस्था निहुइलक कार्यके लागि ऐना हिउँदे सभामा बजेट व्यवस्था कर कार्यक्रम कना प्रतिबद्धता कर्लबाट कार्यक्रममा द एसिया फाउण्डेशनके सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक यज्ञमान सेठी स्वागत करल हुइलक कार्यक्रम सञ्चालन वडा सदस्य तुलसाविक कर्ल रह कार्यक्रममा दलित महिला केन्द्रके कार्यक्रम अधिकृत रिजु रसैलीके समेत उपस्थिति रह खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: ल यति छिटो आमा बन्न लागेको त
2: थाहा पाउँदैछु यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन म त जान्नु पर्ने जस्तै लाग्छ
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
4: साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना टीकापुर स्थित जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुरको 15 वार्षिक तथा 5 चुनावी साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा हुने भएकोले सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ तपसिल मिति 2083 असोज 24 गते शनिबार बिहान ठिक 10 बजेदेखि स्थान पुरानो हाट बजार नजिक सिटी हल टीकापुर जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड टीकापुर कैलाली
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको व्यवहार सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा कैलालीके टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 12 निवासी प्रवेश साउ र 8 सेमिस्टार मन 4 GPA लन्लबाट पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत बीबीए कार्यक्रममा लगातार 8 4 GPA हासिल गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नबाट अध्ययनकै प्रत्येक चरणमा उत्कृष्ट नतिजा कायम गर्दै लगातार 8 पूर्ण 4 GPA प्राप्त गर्क आपनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हुइलको रावल के ई सफलतासे टीकापुर तथा कैलाली क्षेत्र गौरामबीट बनैलबा प्रवेश टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस के पूर्व कर्मचारी स्वर्गीय इन्द्र बहादुर रावल के छावा हुइट जानकी गाउँपालिकाके दुर्गौली बजारमा व्यापारिक सन्ध्याकालीन मेला 2083 शुरू हुइलबा दुर्गौली बजारके आयोजनामा शुरू हुइलक मेला हान सुदूरपश्चिम प्रदेशके उद्योग पर्यटन वन वातावरण राज्य मन्त्री इन्दिरा गिरी उद्घाटन कलबाट मेलाके उद्घाटन गर्दै मन्त्री गिरी भारे विकास एफे असीम किसिमके विकास महोत्सव मेला महोत्सवसे यहाँके उत्पादनके बजारीकरण हुइना वा युवा हुक र रोजगारी पैना बटुइलबाट मेला लेक यहाँके उत्पादन वा सांस्कृतिक सम्भावना हन पहिचान कर्का आग बढ़ सेक्लसे पर्यटनके विकास हुइना वा उहीसे आय आर्जनमा फेर सहयोग पुग्ना बटुइलबाट कार्यक्रममा दुर्गौली बजार व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष चन्द्रभान बम दुर्गौली बजारके ढलनिकास सार्वजनिक शौचालय निर्माण करपना माग सहित ज्ञापन पत्र बुझैलाबाट उद्घाटन सत्र कार्यक्रमके संचालन नवराज उपाध्याय करलरल कला संस्कृति तथा व्यापार दुर्गोली बजारके मूल आधार कना नाराके संग बुधवार थेसे 31 गतेसम्म संचालन हुना मेलामा स्थानीय थेसे राष्ट्रिय स्तरसम्मकै कलाकार हुकनके सांगीतिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना आयोजक जनैलबा मेलामा विभिन्न परिकारके खानाके स्थल व्यापारिक तथा कृषि सामग्रीके प्रदर्शनी स्थानीय कला संस्कृतिके प्रस्तुति मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम लगायतके गतिविधि संचालन हुना आयोजक से जनागिल्बा कार्यक्रममा विभिन्न समुदायके सांस्कृतिक झाँकी सक्यानास हुर्दुङ्गुवानास झुमरा नाच पञ्चे बाजा लगायतकै प्रस्तुति कैगिल रह संजेक समयमा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम सहित कलाकार हुकनके प्रस्तुति रहना हुइला कुंवरसे मेला अवधिभर दुर्गौली बजारमा मनोरञ्जनके विशेष माहौल बन्न अपेक्षा छ कैगिलबा मेला संजेक समयमा हुइना हुइला कुंवरसे व्यवस्थापन तथा सुरक्षाके लागि स्वयंसेवकको प्रहरी परिचालन कर्गिलक आयोजक जनैलबा जानकी गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोरसना भट्ट जोशी हन स्वागत कैगिल्बा गाउँपालिकाकै अध्यक्ष गणेश चौधरी सरुवा होक जानकी आयल हुइलक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट हँ स्वागत कलखुइट गाउँपालिका पहिलचो महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाइल्बा नेपाली कांग्रेसकै जारी महाधिवेशन अन्तर्गत पाँचौं दिन आज लौह केन्द्रीय कार्य समिति चयनकै लागि मतदान हुइटिबा निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत आज बिहान 10 बजेसे मतदान शुरू हुइलकलक हो केन्द्रीय निर्वाचन समितिकै संयोजक प्रेम बहादुर खड्का देलक जानकारी अनुसार आज बिहान 10 बजेसे मतदान शुरू गर्ना कैकन सबको तयारी मिलागिल्बा नेपाली कांग्रेसकै जारी महाधिवेशन अन्तर्गत पाँचौं दिन आज लौह केन्द्रीय कार्य समिति चयनकै लागि मतदान हुइलकलक हो नेपाली कांग्रेसकै सभापतिकै उम्मेद्वार किशोर सिंह राठौर उम्मेद्वारी फिर्ता लेलबाट वहाँ पत्रकार सम्मेलन कैका उम्मेद्वारी फिर्ता लेलक जानकारी गराइलबाट यी स्याग मंगलबार सन्ध्या अन्तिम उम्मेद्वारी दर्ताकै अन्तिम समयमा वहाँ सभापति मन उम्मेद्वारी दर्ता गराइल रह वहाँ कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुइल कुँवरसे कौनो फे नेता निर्विरोध निर्वाचित गर्नाकैक चुनावमा जय नै हुइना बटुइटी सभापति गगन कुमार थापाकै जत्रा फे लोकप्रियता हुइल से फे चुनाव लड्ना बटुइटी आयल रह महिला बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एकल महिला उद्यमीमा 2 लाखसम्मकै प्रविधि सहयोग गर्ना हुइल्बा वस्तक महिला उद्यमी समूहमा 3 लाखसम्मकै प्रविधिमा सहयोग गर्ना कैगिल्बा महिला उद्यमशीलता विकास वित्तीय पहुँच टेवा पूँजी वा प्रविधि सहयोग सहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूह उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यी सहयोग गर्न कैकिलक हो खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
6: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त
7: मै नै जाइँ उहाँ आफ्नो अनुहार बिगरके घरसे बाहर नै निकर्छु
6: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर यी पत्रिकामा लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टा वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
7: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तू मैं अब भी जाए
8: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
9: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै छुट्दै

जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के 86% से धीर बाल बालिका कम्ती मना एक ठो आधारभूत सेवा के पहुँचे वंचित रहलक पागिल बा। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय बुधवार धनगढ़ीमा सार्वजनिक कलक नेपालमा बाल बालिका के बहुआयामिक वंचितीकरण सम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन 2026 प्रदेश के बाल बालिका के भारी हिस्सा अर्थात 86.6% कौनो न कौनो एक ठो क्षेत्रमा वंचित रहलक देखा गेलक हो। प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम 56.4% बाल बालिका दुई वा दुई से धीर आयमन वंचितबाट। राष्ट्रिय स्तरमा असीन वंचितीकरणमा पलक बाल बालिका के अनुपात 51.6% बा। तीन वा सो से ऊपर आयमन वंचित बाल बालिका के 21.4% रहल बा। प्रदेश मन बहुआयामिक वंचितीकरण के सूचांक 0.095 रहल बा। वंचित बाल बालिका औसत मन 46.8% आयम वंचितीकरण भुक्ति रलक प्रतिवेदन से देखा गिल बा। चार वा सो से बढ़ी आयम वंचित बाल बालिका के अनुपात 4.9% रहल बा, जौन राष्ट्रीय अनुपात 5.1% से कम हो। तथ्यांक प्रस्तुत गति केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं के निर्देशक संध्या दाहाल केसी। सुदूरपश्चिम के बाल बालिकामा सक्कुन से भारी समस्या सुरक्षित तथा पर्याप्त आवास ओ सूचना तथा संचार के साधन के पहुँचमा देखगिलक उल्लेख गर्नबाट वहाँ यहाँ के 68.7% बाल बालिका सुरक्षित ओ पर्याप्त आवासीय सुविधा से तथा 52% बाल बालिका सूचना तथा संचार के साधन के पहुँच से वंचित रहलक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नबाट। आँखी हन माया करी दृष्टि के रक्षा करी कना नारा के संग विविध कार्यक्रम आयोजना कर्क आज विश्व दृष्टि दिवस मना जेटिबा। विश्व दृष्टि दिवस हरेक वर्ष अक्टूबर महीना के दोस्रो बिहीबार मना जाइट। यह वर्ष के नारा से व्यक्तिगत रूप में आँखी के हेरचाह कर प्रेरित करना के संग सरकार व सरोकार वाला हन सक्कुन के लागि सर्वसुलभ व गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर आग्रह कैगिल्बा। संग नारा से विद्यालय कार्यस्थल व नीति निर्माण हुना ठाउँमा आँखा परीक्षण तथा जनचेतना के गतिविधि विस्तार करफे जोर देगिल्बा। सन् 1981 मन नेपाल मन अन्धोपन के प्रचलन 0.84% रहलक मन सन् 2022 के आरएएबी सर्वेक्षणमा यी 0.28% झलक देखा गिल्बा। तर अन्धोपन घटती मन आँखी के स्वास्थ्य के सक्कु समस्या समाधान हुइल्नी हो। नेत्र ज्योति संघ के कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शैलेश कुमार मिश्र के अनुसार ग्लुकु मन आँखा के पर्दा सम्बन्धी रोग, मधुमेह से सम्बन्धित दृष्टि समस्या, उमेर से सम्बन्धित आँखी के रोग व दृष्टि डोज जसिन समस्या फे बहर्ती चुनौती बनल बा। बहर्ती रलक औसत आयु, नैसना रोग के भार, बदलती जीवनशैली व डिजिटल उपकरण के व्यापक प्रयोग से आँखी के स्वास्थ्य में लौ किसिम के जोखिम थप्ती रहल बा। संघ हालसम्म 5,02,499 जना उपचार सेवा प्रदान कर सकल बकल से 56,59,624 जना के आँखा के शल्य क्रिया कर सकलबा। संघ के हाल 28 आँखा अस्पताल, 44 जिल्ला शाखा के 226 उपचार केन्द्र मार्फत नेपाली सहित अन्य विभिन्न विदेशी नागरिक आँखा सेवा प्रदान कर सकलबा। यह समाचार के संग खोज खबर हो रहा अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। सुदूरपश्चिम न्यून चापीय प्रणाली व स्थानीय वायु के प्रभाव से देश के विभिन्न ठाउँ में वर्षा हुई थी। कालसम्म पानी पर्ना हुईलकोर से धान निकाट मौसम बीतके किसान टीकापुर में महिला जनप्रतिनिधि के अर्थपूर्ण सहभागिता किला को अध्यक्ष वड़ा सचिव के भूमिका विषय मन छलफल। दलित महिला के विकास किला तालीम संचालन करना कैलाली के दुर्गौली में दुर्गौली व्यापारिक संध्याकालीन मेला शुरू। लगातार 8 जीपीए हासिल करती टीकापुर के परवेश रावल उत्कृष्टता। कांग्रेस महाधिवेशन के निर्वाचन आज सभापति के उम्मीदवार राठौर से उम्मीदवारी फिरता।
लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 12 बजे नेपाली भाषा मनक खबर संक्षेप सुन सेक्बी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र छपीलाल चौधरी धन्यवाद देती मैं गीता फी विदा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

0: मुक्ति का चुनौली मना वैरागले गाउँछु बैस्था छ भनौले
1: काटे सागो चुनु चुनु जित्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया भया।

0: बिना बादल आकाश आउँदो चट्ट्याङ चुट्टुङ झरी मेरा जै था दुख कहीं नहीं सारा त्यसै भरी
1: आधा स्वर्ग खम्पानी छ आधा स्वर्ग विदो मर्ने बाजी।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाट अस्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कान लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
2: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था। वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: लो इति छिटो आमा बन्न लागो त
6: भेल भागन छ भन्छु अझ थाहा पाउँदै छु। यस्तो अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ, कस्तो गाह्रो हुन्छ। पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन, त जान्नु पर्ने जस्तै लाग्छ।
5: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी, 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
7: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा

0: बुका पिएर इठ कबु पेन सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आन्ल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनले से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कतरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर को सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह का सदस्य यही असोज 10 गते देखि 25 गते सम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वन का सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर 2 राजीपुर कैला। Allez.

सुरक्षित जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं है रहे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर रही थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जेबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
4: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
3: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया गन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
4: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
3: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688008 र 98253677272।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा के होस्ट बाटी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुंगी।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में
2: रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैनै जें वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9046747417।
7: पढ़ाई छुट्यो साथी छुटे सबै।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आत्मा त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट केन्द्र कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।

0: अच्छे सुगंधित बनाऊं छु। मंगलदीप सेट 3-in-1 के साथ। हामीलाई मन पर्छ भने भगवानलाई पनि मन पर्छ।
1: मंगलदीप सेन्ट 3-in-1 परफ्युम लाइक फ्रेग्रेन्स।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्झे 5 बजे थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइनमा www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रोमा फेरि सुन्टिरहल बाटी। खोज खबर शुरू गरी खबरके मुख्य मुख्य शीर्षक से छिमेकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सेलरका प्रकरण शैक्षिक सामग्री वितरण। आज विश्व दृष्टि दिवस विविध कार्यक्रमकै मनाजैती सुदूरपश्चिमके 8 ठाउँमा सुपट मूल्य पसल सञ्चालन। सुदूरपश्चिमके बजेट अन्युअलमा प्रदेशसभाके बैठक 24 गते बैठना। पूर्व अनुमान विपरीत मनसूनमा सरदर वर्षा हिमाली क्षेत्रमा धिर। ओ धनगढ़ी से भन्सार छलीके सामान सहित 2 जना पक्राउ। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित छिमेकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रसुवा बाढ़ी प्रभावित परिवारके लड़का प्रकन्ह शैक्षिक सामग्री वितरण कलबा। डान्चे हुइलसेफे बाढ़ी प्रभावित परिवारके लड़का प्रकन्ह पठन पाठनमा सहयोग भए कैक शैक्षिक सामग्री वितरण कलक छिमेकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के व्यवस्थापक वीरेन्द्र चौधरी जानकारी देलबाट। सहकारी सामाजिक विकास कोष कार्यक्रम अन्तर्गत आपन कार्यक्षेत्र भित्रके जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जगतपुरके दिपेन्द्र चौधरी ओ श्याम चौधरीके लड़का प्रकन्ह ऊ सामग्री वितरण कलक हो। कामके सिलसिलामा रसुवा पुगल हुइलक जानकी गाउँपालिका 6 जगतपुरके श्याम चौधरी ओ दिपेन्द्र चौधरी गैलक भदौ 10 गते रसुवाके भोटीकोशीमा अहिलक बाढ़ीपा छ सम्पर्क विहीन रहलबाट। आँखी माया करी दृष्टिके रक्षा करी नकना नाराके संग विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर आज विश्व दृष्टि दिवस मनाजेती बा। विश्व दृष्टि दिवस हरेक वर्ष अक्टूबर महिनाके दोस्रो बिहीबार मनाजाइत। यह वर्ष के नारा से व्यक्तिगत रूपमा आँखीके हेरचाह गर प्रेरित कनाके संग सरकार र सरकारवाला हुकन सक्कुनके लागि सर्वसुलभ गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर आग्रह कैगिल्बा। संग नारा से विद्यालय कार्यस्थल और नीति निर्माण करना ठावमा आँखा परीक्षण तथा जनचेतना के गतिविधि विस्तार कर फे जोर देगिल्बा। सन् 1981 नेपालमा अन्धोपन के प्रचलन 0.84% रहलकमा सन् 2022 आरएएवी सर्वेक्षणमा यी 0.28% झरलक देखागिल्बा। तर अन्धोपन घटतीमा आँखाके स्वास्थ्यके सबको समस्या समाधान हुइल्ने हो। नेत्रज्योति संघके कार्यकारी निर्देशक डाक्टर शैलेन्द्र कुमार मिश्रके अनुसार ग्लुकोमा आँखाके पर्दा सम्बन्धी रोग, मधुमेहसे सम्बन्धी दृष्टि समस्या, उमेरसँग सम्बन्धित आँखाके रोग, दृष्टि दोष जसिन समस्या फे बढ़ती चुनौती बनलबा। बढ़ती गैलक औसत आयु, नैसना रोगके भार, बदलिन्दो जीवनशैली व डिजिटल उपकरणके व्यापक प्रयोगलेके आँखाके स्वास्थ्यमा लौ किसिमके जोखिम थप्ती गैलबा। संघ हालसम्म 5,02,499 जहन उपचार सेवा प्रदान कर्सेकल बा कलसे 56,59,624 जना के आँखा के शल्यक्रिया कर्सेकल बा। संघ हाल 28 आँखा अस्पताल 44 जिल्ला शाखाके 226 उपचार केन्द्र मार्फत नेपाली सहित अन्य विभिन्न विदेशी नागरिक हुकन आँखा सेवा प्रदान कर्सेकल बा। सुदूरपश्चिमके 8 ठाउँमा सुपट मूल्य पसल सञ्चालन कैगिल्बा। उपभोक्ता हुकन राहत देना उद्देश्य लेक साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन 8 ठाउँमा सुपट मूल्य सञ्चालन कर्लक हो। कैलालीके धनगढ़ी, टीकापुर अतरिया, कञ्चनपुरके महेन्द्रनगर, बेलौरी, डोटीके डिपायल डदेलधुरा व बैटडीके पाटनमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा आइलक हो। सहुलियत पसल मना चिनी प्रति किलो 100 रूपियाँमा बिक्री हुइटिरहल्बा। बजार मूल्य से प्रति किलो 25 रूपियाँ सस्तो हुइल्पा छ। चिनी खरिदकना उपभोक्ता के भीर बहरलक देगिलक साल ट्रेडिङ जनैलबा। साल ट्रेडिङ कर्पोरेशन धनगढ़ी के प्रमुख रूप बहादुर कुंवर के अनुसार तराई के सहुलियत पसल से एक जहन 5 किलो व पहाड़ी जिल्लामा 3 किलोसम्म चिनी बिक्री करना व्यवस्था करगिल्बा। धनगढ़ी स्थित कार्यालय परिसर से कलहक दैनिक करीब 25 क्विंटल चिनी बिक्री हुइटिरहल्बा। वस्तकना नून प्रति किलो
24 रूपियाँ के दरले एकजना 6 किलोसम्म उपलब्ध करागिल्बा कलशे खाने तेल दाल ओ चिउरामन प्रति किलो 7 रूपियाँसम्म छुट दिएगिल्बा। चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुके माग बढ़लकेसँग बजार मूल्य समेत बढ़ सेक्ना हुई कहर्से सहुलियत दर मन खाद्यान्न उपलब्ध कराई पसल संचालनमा करगिलक साल ट्रेडिंग जने।

0: दुनुपछान असोज 23 गते बोलेलक छरीट मन मुद्दा के अंतिम टुंगो निलागलसम आगक सरकार प्रदेशसभा में पेश कलक बजेट बाहेक लौ बजेट प्रक्रिया आग नई बढ़ाए अंतरिम आदेश मा करगिलक अधिवक्ता उपाध्याय बटुलवा भन्सारसे छलीके सामान सहित दुईजना पक्राउ परलबाट कैलालीके धनगढ़ी उपमहानगरपालिका साथ मनेहरा स्थित ओह ठाउँ बैठना 36 वर्षकी रंजना राणा पक्राउ परलबाट राणा अवैध रूपमा भारतसे भन्सार छल्क लनलक अन्दाजी मूल्य 3,53,000 बराबर के सुटपीस चुन्नी अन्य कपड़ा लगायत के सामान घर में लुका छिपा का धलक अवस्था जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से खटगिलक प्रहरी के टोली आवश्यक प्रक्रिया पूरा कर उस कपड़ा सहित हुकनहान नियंत्रण में लेलक जनैलबा ओस्तक कैलाली के धनगढ़ी उपमहानगरपालिका एक त्रिवेणी स्थित ओह ठाउं बैठना 45 वर्षीय जीवन ढुंगाना भन्सार छली के सामान सहित पकड़ाउ परलबाट ढुंगाना अवैध रूप में भारत से भन्सार छल कैका ननलक अंदाजी 2,70,000 बराबर के टेंट के कपड़ा लगायत के सामान घर में लुका छिपा का धरलक अवस्था जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली से खटगिलक प्रहरी के टोली राति के समय में आवश्यक प्रक्रिया पूरा कैका ऊ टेंट सहित ठोकहन नियंत्रण में लेलक हो। मौसम पूर्वानुमान विज्ञान के पूर्वानुमान विपरीत यह वर्ष के मनसून अवधि में नेपाल में सरदर वर्षा हुई बा नेपाल मौसम विज्ञान विभाग यह वर्ष अलनीको प्रभाव के कारण मनसूनी वर्षा सरदर से कम हुना प्रक्षेपण सार्वजनिक कल रह तर देशभर के 124 वर्षा मापन केन्द्र के तथ्यांक अनुसार यह वर्ष के मनसून मन 95.4% वर्षा हुई बा नेपाल मनसून अवधि में 90 से 110% समय वर्षा हुईना औसत वा सरदर वर्षा के रूप में लेना कई जेट मौसम विज्ञान विभाग यह वर्ष के मनसून अवधि में हुईलक वर्षा के तथ्यांक औपचारिक रूप में सार्वजनिक कर स्याकल्नी हो तर विभाग स्रोत से अनलाइन प्राप्त हुई जून थेसी सेप्टेम्बर सम्म के मापन के आधार में देशभर के वर्षा 1,317.1 मिलीमीटर रेकर्ड हुईला यी अवधि के सामान्य वर्षा 1,380 मिलीमीटर हो। सामान्यतया नेपाल मनसून 13 जून थेसी शुरू होकन 2 अक्टूबर में बाहर जाइत यी सरदर मिति कबुकाल तर उपफे हुईना करलबा यह वर्ष नेपाल 19 जून अर्थात असार 5 गते मनसून भित्रल रह आज 8 अक्टूबर अर्थात असोज 22 गते सम्म फेर नेपाल से मनसून पूर्ण रूपमा बाहेर हुल्नी हो। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के प्रवक्ता विभूति पोखरेल नेपाल मना आज सम्म फे मनसून कायम रहलक से मनसून अवधि में हुईलक वर्षा के विश्लेषण करनी सेकलक बटुलबाट यद्यपि यह वर्ष मजा वर्षा हुईलक प्रारंभिक अनुमान करगिलक वहां बटुलबाट अल निनो वर्षा मन मनसून अवधि में सरदर से फिर कम वर्षा हुईना अनुमान रह तर यह वर्ष मजा वर्षा हुईलबा विभाग के प्रवक्ता पोखरियल कल ठैक्क कतरा वर्षा हुईल कैक मनसून बाहेर हुईल पाछा विश्लेषण कर खबर में फेरफे विश्राम पाछाइनिनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
1: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटरा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना उत्तर फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो है ना कबू कहूँ रख घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई लग मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फिर लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
0: कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
5: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौँ नजम्ने, तालुको रौँ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
0: डाक्टर आउने दिन कार्तिक 7 गते पहिलो शनिबार
5: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मुख्य न्यायाधिवक्ता ठकेन्द्र राज जोशी राजीनामा देलाबाट मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा देलक जोशी के राजीनामा स्वीकृत कर्किलक प्रदेश प्रमुख के सचिवालय से जनागिल्बा। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकी सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख नजीर मिया जोशी 2081 साउन मन मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्ति कैगिल रह उही से आग शाहके पहिल कार्यकालमा फेर उहाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता रह। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कौनो एक क्षेत्रकै कलह प्रयासले सम्भव निहोकन राज्य निजी क्षेत्र वो समग्र समाजकै साझा राष्ट्रिय संकल्पसे कलह सम्भव हुना बटुलबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पदाधिकारी तथा सदस्य हुकन संघकै भेट मन राष्ट्रपति पौडेल समृद्ध नेपाल निर्माण के संकल्प व्यवहारमा रूपान्तरण कर निजी क्षेत्र आमीन जिम्मेवार सृजनशील ओ अग्रणी भूमिकामा प्रस्तुत हुना अप्न अपेक्षा धरलक बटुलबाट वहाँ कल नेपालकै आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रकै पुरैटी ऐलक योगदानकै उच्च प्रशंसा कर्ती यहाँकनकै निरन्तर सफलता व प्रगतिकै लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त करटु। वहाँ नेपालकै अर्थतन्त्र गतिशील उत्पादनमुखी व प्रतिस्पर्धी बनाई सरकार व निजी क्षेत्र बीचकै सहकारी अपरिहार्य रहलक बटुलबाट राष्ट्रपति पौडेल नेपाल कल उद्योग वाणिज्य महासंघ के सांगठनिक विस्तार महासंघ में आबद्ध 14,00,000 से फे धीर व्यवसाय के प्रगति समग्र देश के प्रगति हो। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना व नागरिक के जीवन स्तर सुधार में याकर भूमिका अतुलनीय बा। सरकार नीतिगत स्थिरता, लगानी के सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सहज शासन ओ व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण कर पर्यटकना निजी क्षेत्र से लगानी उत्पादन उद्यमशीलता नव प्रवर्धन ओ रोजगारी सृजना थप विस्तार कर पर्यट यी दुई पक्ष बीच के विश्वास सहकारी से नई आर्थिक समृद्धि के बलकर आधार निर्माण हुई स्याकट उहाँ कल। छिमेकी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सेलरका प्रकन्ह शैक्षिक सामग्री वितरण आज विश्व दृष्टि दिवस विविध कार्यक्रम के आयोजना कर मनाजेती सुदूरपश्चिम के 8 ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल संचालन सुदूरपश्चिम के बजेट अन्योलमा प्रदेश सभा बैठक 24 गते बैठक पूर्व अनुमान विपरीत मनसूनमा सरदर वर्षा हिमाली क्षेत्रमा आमिन ढिल ओ धनगढ़ी से भन्सार छली के सामान सहित दुईजना पक्राउ आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार नेपाली भाषामा 6 बजे खोज खबर सुन सक्दी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मैं गीता फी विदाई थी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रही राम राम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो ना, कटा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबू कहूँ र घुम जाए त था पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 4326।
5: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाने कार्यक्रम संबंधी सूचना
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
6: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ
7: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
1: पर्स हराएको सूचना टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 14 बस्ने जितेन्द्र रावलको असोज 12 गते साँझ 6 बजेदेखि 8 बजेभित्र हुलाकी राजमार्ग हुँदै लम्की खकलौला मेन रोडबाट धनगढ़ीदेखि टीकापुर आउने क्रममा फुलबारीदेखि टीकापुर ब्लक नम्बर 14 घर पुग्दासम्म पर्ससहित पर्समा भएको नेपाली र भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्र कृषि विकास बैंकको एटीएम कार्ड र 1090 रूपियाँ सहित गोल्डेन कलरको पर्स हराएकोले भेटाउनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नम्बर 9812-6252-9907-40-350 खबर गरिदिनु हुन वा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध छ साथै पर्स भेटाएर दिने व्यक्तिलाई पर्समा भएको पैसा र अन्य पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733।